चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः प्रातस्मरा

बनाए, ऊपर असली लेबल अंदर नकली घी और चाय, पॉपलीन का बदल के नंबर टेरीलीन बनाए, या बेईमानी तेरा आसरा बोल के लूटता जाए।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

जवानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

हिरण्ये ज्ञातैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः हरि ओम एवरीबॉडी रिमेंबर योर गुरुस योर गुरु फर्स्ट गुरु इज मदर फादर रिमेंबर व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेज पिता अहम

विश्वविज्ञः स्वरात तेने ब्रह्म हृदाय अद्वितीय मुह्यति यत सूरत तेजो वारे मृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वनेन सह